0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी, आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: हफीज होशियारपुरी

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: What is your behavior of choice this evening? Do I sound a little cheesy?

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बात।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: आउज बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सामने नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामने हमारे चीता चीता प्रोग्राम, जिस तरह हमारा रूटीन का प्रोग्राम होता है, वो आपके साथ हम शेयर भी करेंगे और आपको बहुत सारी खबरें भी देंगे। समझ नाज़रीन, बहुत सारी खबरें होती हैं जो आप देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। वो बहुत सारी जो लोग लगाते हैं या अपने तर्ज की लगाते हैं, अपने तरीके से लगाते हैं, वो हकीकत नहीं होती। अगर 6 सितंबर की बात हो, 6 सितंबर के नाम को कैश कराया जाए, तो फिर 6 सितंबर वाला माहौल भी बनाना पड़ता है, माहौल भी होना चाहिए। खाली 6 सितंबर का नाम लेकर जो है खबर लगा कर उससे 6 सितंबर मनाने का जो है वो दिन नहीं मनाया जाता। आपकी खबर तो बन जाती है, और ख़ासकर जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो हकीकत पर बनाया करें। एक पार्टियाँ होती हैं, हकीकत होता है, कोई भी पार्टी हो, जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, वो पार्टियाँ हैं। खुलकर उनका नाम लें, खुलकर उनकी बात करें, खुलकर उन पर बात की जाए, तो ये हकीकत पर मबनी होना चाहिए। दो नंबर खबरें बनाकर उनको लगा देना, अखबारात में लगा देना, उसकी कोई वैल्यू या कोई वक़्त नहीं होती है। हम खुद लोग सारे जो लोकल होते हैं, हमें सब कुछ पता होता है कि हकायक पर मबनी क्या है, तो इस पर हमें ख्याल करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि खबर जो है वो हकीकत पर जो मबनी हो। समाइन हमारे साथ साथ रहिएगा।
3: आपकी आवाज़ के प्रोग्राम 24 घंटे आप रेडियो आपकी आवाज़ इंटरनेट पर सुन सकते हैं। हमारे रूटीन के प्रोग्राम उसी तरह होंगे, लेकिन 24 घंटे आप इंटरनेट पर सुन सकते हैं। आप www.aapkiawaz.dk पर जाएं, वहां आपको निशान नजर आएगा एक लो स्पीकर का ब्लिंक हो रहा होगा, आप उसको क्लिक करें और आप रेडियो ऑनलाइन 24 घंटे सुन सकते हैं। लाइव प्रोग्राम भी होते हैं मस्तमाइन, इसके अलावा टीवी का प्रोग्राम भी होता है, राइट साइड पर स्क्रीन है, आप उसको क्लिक करें। जो अदारा आपकी आवाज़ के मालूमात के प्रोग्राम बनते हैं, आप उन्हें देख भी सकते हैं, आप उन्हें सुन भी सकते हैं। मस्तमाइन बड़ा आसान तरीका है, जिनके पास आईफोन है या जिनके पास टेलीफोन में इंटरनेट मौजूद है या अपने घर में इंटरनेट है, आप इंटरनेट पर जाएं और www.aapkiawaz.dk और आपको वहां आपकी आवाज़ की वेबसाइट नज़र आएगी, आपको वहां निशान नज़र आएगा लाउड स्पीकर पर, क्लिक करें और आप रेडियो ऑन एयर सुन सकते हैं। मस्तमाइन 24 घंटे आप रेडियो आपकी आवाज़ सुन सकते हैं। मस्तमाइन आप कोई राय देना चाहें या आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही, तो आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 2785005555, दूसरा नंबर है 2630100, इस पर आप रब्ता कायम कर सकते हैं। इसके अलावा 3929714 पर भी आप रब्ता कायम कर सकते हैं। मस्तमाइन अगर आपकी आवाज़ पर कोई भी तस्वीर लाना चाहता है, अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कराना चाहता है, तो सबके लिए दावत आम है, ये आपका प्रोग्राम है, ये आपकी आवाज़ है, ये सबकी आवाज़ है, सबको लेकर हम चलते हैं। आपके पास कोई तजवीज़ है तो आप अपनी तजवीज़ हमें दे सकते हैं, हम आपकी राय का एहतराम करेंगे। जब आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ मेल होगा, मेल का एड्रेस होगा, आप हमें मेल करें, आपका पैगाम हमें मिल जाएगा। इसके अलावा मस्तमाइन www.aapkiawaz.dk पर जाएं, आप टीवी और रेडियो दोनों सुन और देख सकते हैं 24 घंटे।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत शाव इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है।

0: पास छोटी गन थी और पीछे मैदान था, उसके बाद पर्थ है, एक साइड पर गांव आता था, दूसरी तरफ पर्थ पोथ पे दो गांव थे, और उसके बाद जो है थोड़े से और 5-6 किलोमीटर के फासले पे बॉर्डर शुरू हो जाता था। तो इंडिया का हमला इतना सख्त था कि इसको रोकने के लिए और उसकी गन्स के फायर जो थे ये हमारे सरों पे से गुजरते थे, और एकदम अपनी वालदा और बहन भाइयों के साथ घर में कोठी में मौजूद थे। तो ये शुक्र है खुदा का कि कोई गोला जो है वो हमारे कोठी या साथ वाली कोठियों में नहीं गिरे, लेकिन थोड़ी दूर आगे फार्म था जो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 150 मीटर के फासले पे हमारे घर से होगा, या 100 मीटर या 150 मीटर, वहां उस डेयरी फार्म के अंदर जो है वो कुछ गोले गिरे, और इस तरीके से जो है वो हमारी फौज के जो मुजाहिदीन थे उन्होंने फौरन आकर सब जगह पे खुद ही ये जो मोर्चे होते हैं और कंधकें खोदी और लोगों को हमें आकर जगाया और कहा कि आप लोग ने कहीं जाना नहीं, कोई लाइट ऑन नहीं करनी, कोई किसी किस्म की गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी ताकि दुश्मन को आपकी पोजीशन का पता ना लग जाए, अगर ज्यादा गोले नजदीक आके गिरे तो आप लोगों ने इन खनकों में जगह लेने नहीं है। और उनकी बहादुरी ये देखें कि हमारे रिटायर्ड फौजी जो थे वो रजाकारों को लेके, क्योंकि उनको अलर्ट तो पहले ही कर दिया गया था कि दुश्मन किसी वक्त भी हमला कर सकता है, तो वो ट्रकों पे वहां पे आ गए और उन्होंने बकाया जो कैंट का और दूसरा इंतजाम था वो संभाल लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात राजा साहब वो मैं आपको ये बताता चलूं कि उस वक्त जो जज्बा था, जो लोग बॉर्डर से और बॉर्डर के बिल्कुल करीब गांव के रहने वाले थे लोग, वो अपना सब कुछ छोड़कर वापस आ गए, उनकी बच्चियां और बच्चे भी वापस आ रहे थे, लेकिन उनका जज्बा इतना ज्यादा था, इतना अच्छा था कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कि मैं मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अभी 16 साल का हुआ था और ये इतनी खूबसूरत यादगार है मेरे लिए कि देख करके वही उन लोगों के जज्बे ने हमारे अफवाज के जज्बे बढ़ा दिए। हालांकि दुश्मन ने आपको पता है कि सियालकोट पे छविंडा का जो महाज है वो टैंकों के साथ लड़ा गया और इंडिया ने पूरी बटालियन जो थी, पूरा ब्रिगेड जो था वो टैंकों का छुंडा पे उसने भेज दिया। छुंडा पे इसलिए भेजा कि अगर वो छुंडा को फतह कर लेता है तो ये सीधा गोजरांवाला पहुंच जाएगा और गोजरांवाला पहुंचने में उसको कोई रोक नहीं सकेगा और गोजरांवाला पे वो कब्जा करने से पाकिस्तान को दो टुकड़े कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ी जगह थी जिसके ऊपर हमारे पास उस वक्त 100% 30 टैंक थे। जो टैंक जो थे वो बातें हुए आते थे, छुंडा की तरफ जाकर फायरिंग करते थे, सियालकोट के महाज पे फायरिंग करते थे और वही छम जोड़ियां जाकर लड़ते थे, क्योंकि अभी तक पीछे से जो पेशावर या कोहाट और ये दूसरी जगह बन्नू और ये इस्लामाबाद में जो हमारी अफवाज थी उनके जो असला था वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा था। तो इसको पहुंचाने के लिए सबसे पहले उन्होंने ये कोशिश की कि हमारी जो रेलवे लाइन्स हैं उसको उड़ाया जाए, तो उन्होंने सियालकोट वजीराबाद पे जो जंक्शन है उसको तबाह करने की कोशिश की। तो अल्लाह के फजल से वो भी लोगों ने, हम बाद में बात करेंगे, वो भी लोगों ने आसानी से जो है वो उसको
1: एक इस पर बात करेंगे, जो शहदा हुए उस पर बात करेंगे, बाकी मेहमान भी होंगे तो उस वक्त इस पर जो है वो डिबेट भी करेंगे। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया।
0: ओके जी,
1: समय नाजरीन ये थे आपके हमारे अपने थिंक टैंक से ये तौकीर हसन बुखारी शाह साहब जो बात कर रहे थे।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: समय इस वक्त हमारे साथ रहमतुल्ला बेग साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं। रहमतुल्ला बेग साहब यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। एक जमाने में मलक सदीक साहब जो थे वो उनके पास ये चीफ ऑर्गेनाइजर वाला होता था। अब जो है रहमतुल्ला बेग साहब हैं, यह मुस्लिम लीग नवाज को यहाँ रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। उनके साथ हैं चेयरमैन हैं मास्टर याकूब साहब, सदर हैं उनके आफ्ताब रोमी साहब, बाकी इनकी टीम है जो इनके साथ काम करती है। ये एक मिले जुले साथी हैं, आपस में बातचीत भी करते रहते हैं। तो आज जो रहमतुल्ला बेग साहब हमेशा ये जितने दिन होते हैं ये दिन मनाते हैं मुस्लिम लीग के हवाले से, कौमी जो दिन होते हैं, तो नवाज शरीफ साहब के साथी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह जो आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं, ये गाजी हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी सआदत है कि जो इस वक्त तक जो है वो ठीक है, अपना जो है अपना काम चला रहे हैं, सेहत अच्छी है, और फौज 65 की जंग के ये गाजी हैं। बेग साहब हम आपको सलाम करते हैं, 65 की जंग के आप गाजी हैं।
2: जी राज साहब बहुत शुक्रिया नवाज़िश।
1: बेग साहब जब ये 65 की जंग थी तो आप डेफिनेट फौज में थे, आप चूंकि खिलाड़ी भी थे, तो फौज में जो है वो खिलाड़ी की बड़ी रिस्पेक्ट होती है। आपके पास जो कलर भी आपने देखा, वो कोट भी देखा, पाकिस्तान का कलर भी देखा, बेग साहब
2: वो जो था वो 66-67 का था, जब मैं गाजी हूँ 65 का। 65 में मैं आर्मी में नहीं था, मैं 66 में गया हूँ आर्मी में। 65 में हमारे घर के दो ट्रक होते थे, और जब जंग शुरू हुई तो हम लाहौर कैंट से असला लेके जाया करते थे बॉर्डर पे, हडियाराबाद बॉर्डर पे और सेम किर बॉर्डर पे। और क्या बताऊं, बहुत ही शिद्दत के साथ हमारे ट्रक के ऊपर एक बम गिरा जिसने उस सारा ट्रक तबाह कर दिया। लेकिन अम्निशन जो लेके जाना था वो हमने जल्दी से निकाल के बाहर रखा, फिर दूसरी गाड़ी आई तो वो ले गए। तो हम तो अल्लाह का फजल करम से,
1: आप काम तो फौज के लिए कर रहे थे ना?
2: जी बिल्कुल, फौज के लिए कर रहे थे, फौज अपने मुल्क के लिए कर रही थी और मैं भी अपने मुल्क के लिए काम कर रहा था। क्योंकि हिंदुस्तान के जो वजीर आजम थे उन्होंने कहा था कि हम आज सुबह नाश्ता जो है वो हम लाहौर में आके करेंगे, तो मैंने कहा देखते हैं कैसे होता है नाश्ता इनका लाहौर में। और बड़ा जज्बा था, शौक था, और हमने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी जिसकी दुनिया सारी गवाह है। और अल्लाह ताला का फजलो करम से पाकिस्तान जो था वो जो उन्होंने नक्शा बनाया था वो उसका उनका तोड़ फोड़ हो गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। पाकिस्तान एक पूरी दुनिया में मुतारफ हुआ पाकिस्तान। और आज भी आज का दिन जो है वो हम बड़ी खुशी से मनाते हैं कि हमने दुश्मन को इबरकनाक शिकस्त दी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पूरी दुनिया में लगे। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमने अपने पाकिस्तान को बचाया, अपने जानो माल कुर्बान किए हमने पाकिस्तान पे। और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे।
1: बेग साहब आपने हमेशा जिंदाबाद के नारे लगाए, आपने हमेशा कौमी दिन जो है उजागर किए, आपने हमेशा कौमी दिन मनाए। 6 सितंबर का दिन भी आप मनाने जा रहे हैं, आपकी छतरी के नीचे मनाया जा रहा है। तो बेग साहब उस जमाने में जब आपको पता है अंग्रेज का दौर था, फौज थी, और फौज में जो है वो भर्ती करते वक्त अंग्रेज भी नहीं भर्ती करते थे, अल्लाह ताला ने बंदों को तो कहना है कौमों में पैदा किया है, तो बाकी जिसका अमल ज्यादा होगा, जिसका तकवा ज्यादा होगा वही कामयाब होगा। तो बेग साहब ये अंग्रेज क्यों नहीं भर्ती करते थे ये कमी?
2: देखे अंग्रेज जो है ना उनका कल्चर और हमारा इस्लामी, हमने पाकिस्तान का नारा लगाया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस नारे के साथ ही पाकिस्तान बनाया था, जो अंग्रेजों को और हिंदुस्तानी हिंदुओं को बिल्कुल गवार नहीं था, बिल्कुल उनको ये उनके लिए ये एक आफत थी। लेकिन मुसलमानों के लिए आजाद मुल्क और आजाद मुल्क के बाद 1965 की जंग जो है इसने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी मुसलमान हो या पाकिस्तान में कोई भी दूसरे मजहब के लोग हों, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के लिए बेइंतहा कुर्बानियां दी लोगों ने, बेइंतहा कुर्बानियां। हमारे जैसा घर जो सारा उजड़ गया, एक ट्रक था उसी के ऊपर हमारा गुजरो काम चलता था। मेरा बड़ा भाई जो था वो उसको देखभाल करता था, ड्राइविंग भी करता था। तो जब ट्रक हमारा खत्म हो गया तो वो वाल्टन ट्रेनिंग स्कूल और वाल्टन रोड के ऊपर वो ट्रक हमारा एक साल तक पड़ा रहा। उसके बाद हमने कबाड़ियों को भेज दिया।
1: एक साहब, ये एक बड़ी तारीख है, हिस्ट्री वाइज आप बातें कर रहे हैं, ये रियलिटी है जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हिस्ट्री है। तो बेग साहब, आप ये अपना दिन मनाते हैं आज भी, जो आप 6 सितंबर का दिन जो है आपकी छतरी के नीचे मनाया जा रहा है, तो बेग साहब उस वक्त भी दो नंबर लोग थे कि मोहतरम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को गालियां निकालते हैं। तो जब कोई मुस्लिम लीग की बात होती है तो मुस्लिम लीग को कैश कराने के लिए वो मुस्लिम लीग के बन जाते हैं, तो उस वक्त भी दो नंबरी होती थी।
2: दो नंबरी तो हर दौर में रही है, उस दौर में भी दो नंबरी थी। और दो नंबरी जो है ना उसको हमने पिस्पा कर दिया था पाकिस्तान में। हमने दो नंबरी होने नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है खयूर अवाम है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत और प्यार करते हैं, और उनकी नजर में जो ऐसे बदकार लोग होते हैं उनका किला कुमा करते हैं।
1: बेग साहब, आपके लीडरान जो है वो बरतानिया तशरीफ लाए हुए हैं, पंजाब की वज़ीर-ए-आला भी बरतानिया तशरीफ लाए हुए हैं, तो ये कौन सा जो नंबर तीन किस्म का जो बातचीत चल रही है जिसपे कुछ चीज निकलेगी बाहर, कोई आप खबर आज 6 सितंबर के हवाले से बड़ी खबर दें?
2: देखें जी, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों एक पेज पे जैसे चल रहे हैं, अगर चलेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, उनकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ। अगर इनमें दराड़े पड़ गई और ये अलहदा हो गए तो फिर कुछ कोई चीज।
1: तो बेग साहब, दो पेज से क्या मुराद है अपना? क्या नाम जरदारी साहब और नवाज शरीफ पार्टी तो दो पेज पे नहीं है।
2: दो पेज पे चले आ रहे हैं आज तक, इसीलिए हुकूमत है। अगर दो पेज पे ना होते तो हुकूमत जो है नहीं होती।
1: बेग साहब देखें, जरदारी साहब ने खपे पाकिस्तान का नारा लगाया, दूसरी बार उनको सदारत मिल गई। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का नारा लगाया, तीन बार उनको वजारत उज़्मा मिल गई और चौथी बार उनके भाई को वजारत उज़्मा मिल गई। तो बेग साहब जो
2: राय साहब आपकी बात बड़ी हो
1: जी जी,
2: अहमदा भी जो है ना वो सियासी जमातों के लीडर ही होंगे जिनको वजीर आजम और जिनको सदर बनाया जाएगा, और वो इलेक्ट आएंगे, अवामी नुमाइंदे होते हैं, वो खुद नहीं बन के आ जाते, अवाम उनको वोट देती है और अवाम की ताकत के जरिए वो आते हैं मैदान अमल।
1: तो बेग साहब, बड़ी अच्छी बातें आपने की, आप पाक फौज के साथ काम करते रहे, आपका बिजनेस था, आपने इतनी बड़ी खबर बताई कि आपके ट्रकों पर जो असला जाता रहा, आपने ये बात बताई, आपका ट्रक भी जो है तबाह हुआ और कितना अरसा पड़ा रहा उसका, फिर आपने उसको कबाड़ी के आगे भेजा। बेग साहब ये बड़ी तारीखी बातें कर रहे, आगे मेयर साहब ने बड़ी तारीखी बातें की। बेग साहब आखिर में आप कुछ कहना चाहें?
2: मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी लोग जो है पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और पाकिस्तान के लिए बेइंतहा कुर्बानियां भी देते हैं, और ये जो दो नंबर के लोग हैं इनसे बचना चाहिए। इनको पाकिस्तान का इल्म ही नहीं कि पाकिस्तान किन किन मुश्किलात से निकल के यहाँ तक पहुंचा है। लिहाजा पाकिस्तान पाकिस्तान है और पाकिस्तान को कोई बुरी नजर से देख भी नहीं सकता, जो देखेगा उसका किला कमा किया जाएगा,
1: किला कमा किया जाएगा। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया मैम, मशहूर आपने मुझे वक्त दिया।
1: समय नाजरीन, ये थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चीफ कोऑर्डिनेटर मोहतरम मिर्जा रहमतुल्ला बेग साहब। समय हमारे साथ साथ रहिए, अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपने

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: को डिस्कशन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मसला यह है कि कोपेनहेगन और वेस्ट आइन में लोगों को वैसी ही सहूलत देनी चाहिए जैसे उडनसे के अंदर और दूसरी जगह के ऊपर उन्होंने सहूलतें बनाई हुई हैं। आपको पता है कि आपको खालिद भट्ट साहब ने यह बताया था कि उडनसे बकायदा स्टेशन के ऊपर, मैं अभी देख के आया हूँ, उडनसे स्टेशन के ऊपर उन्होंने जो है वो बकायदा बहुत सर्विस बनाई हुई है कि आप उतरते
1: शाह
0: ही
1: साहब
0: वहीं उसके अंदर
1: आसानियां आ
0: चले जाए।
1: रही हैं, उडनसे वालों को पहले मिल गई हैं। अभी यहाँ के जो हमारे सिटी काउंसलर्स हैं, जितने भी कम्यूनों में बैठे हैं, आप हमेशा कहते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए। शाह साहब, ये जो अभी लॉर्ड मेयर हैं अपना यहाँ कोपेनहेगन से, कोपेनहेगन की पार्लियामेंट, तो मैं आपका तजिया जानना चाहूँगा, हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम बचा है, कि वो इस सारे सिस्टम को कामयाब हो जाएंगी, या वो तनकीद का निशाना बनेंगी, या वो सबकी तालियां लेंगी, या सबकी दुआएं लेंगी।
0: देखिए जी, सबसे बड़ी पार्टी जो है वो है इनिस लिस्टन, और ये एसएफ की जो बॉब एस्टर है, इसके पास इतना बड़ा तजर्बा नहीं है। कम्यून और पार्लियामेंट के अंदर डिफरेंस यही है कि जो पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं वो सिर्फ लॉ मेकर्स होते हैं या पार्टी की सियासत को आगे लेके चलते हैं। जो कम्यून होती है, कम्यून के बजट के अंदर जो सियासतदान इलेक्ट होते हैं, काउंसलर इलेक्ट होते हैं, उनको कुछ तो अपनी पार्टी का भी मंशूर देखना पड़ता है और कुछ उनको अपनी जहानत भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। और ये देखना पड़ता है कि हमारे इलाके में जहां कल को हमने दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए जाना है, वहां हम क्या पेश कर सकते हैं और हम क्या बता सकते हैं। यहाँ पे तख्तियां नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे ये चीज जरूर लिखी जाती है कि इस बंदे ने ये चीजें जो है वो मिनट्स पेश की है, और उसके ऊपर हाँ या ना हुई ये एक अलहदा बात है। लेकिन हिम्मत वही कर सकता है जो अवाम दोस्त हो, अवाम दोस्त बजट जो है वो पेश करे, ख्वाब वो अकेला वोट हो या उसके पास 50 वोट हो। बात उनको अवाम की करनी चाहिए, हॉस्पिटल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करना चाहिए। पूरे कोपेनहेगन के अंदर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग होनी चाहिए। बाज़ुकात आप ऐसी जगह जाते हैं कि आप जहां किसी को विजिट करने के लिए जाते हैं, पूरे वेस्ट आइन और कोपेनहेगन में मेजोरिटी जगह पे, तो आपको वहां पे बकायदा वो जो है वो हाउस कीपर से एक कार्ड लेना पड़ता है जो आप अपनी गाड़ी में रखेंगे ताकि आपको पार्किंग टिकट ना लग जाए। और ये इतना डिफिकल्ट है कि आप किसी को विजिट करने जाते हैं और
1: तो
0: आपको
1: शाह
0: इस
1: साहब,
0: असूल
1: इसका
0: का पता
1: मतलब
0: नहीं।
1: है कि जो मामलात हैं सख्त सख्त होते जा रहे हैं, कानून में सहूलियात नहीं मिल रही, सख्तियां मिल रही हैं, गो के रेवेन्यू भी जो है वो बाकायदा मिल रहा है, अच्छी तादाद में प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं। तो शाह साहब, हमारे पास 1 मिनट है, नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे?
0: जी, मैं नौजवान नस्ल को ये कहूंगा कि देखिए, ये आपका मुल्क है, आप पाकिस्तान की सियासत को भूल जाएं, यहाँ की सियासत में यहाँ के कानून का आप एहतराम करें, आपको कोई बुरा शायरी नहीं कहेगा। हम इसी मुल्क के अंदर 1970 से लेके 1990 से थोड़ा सा ऊपर हमने यहीं पे जिंदगी गुजारी है, हम भी उस वक्त जवान थे, यंग थे, तो ये बताएं कि ये लोग राशिस्ट नहीं थे, बल्कि हमने खुद अपने अंदर राशिज्म पैदा किया है। इसको हमें खत्म करना चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए, गाड़ी चलाते वक्त हमें एहतियात करनी चाहिए, अगर आगे भीड़ है, अगर रश है, तो बड़े एहतराम से अपने इंतजार वेट करें। बल्कि अगर आपने कहीं जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम बहुत ज्यादा रश है, तो आप 15 मिनट पहले निकल जाएं, आप मोबाइल टेलीफोन को इस्तेमाल ना करें गाड़ियों में। और जितने भी हमारे नए बंदे आ रहे हैं जो इस वक्त वाहन और दूसरी गाड़ियां बड़े ट्रक चला रहे हैं, वो इतना रफ सड़क को एक से दूसरी साइड पे जाते हैं, तो और यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो लाजमन गवर्नमेंट को कर देना चाहिए कि अगर कोई आगे गाड़ी जाती हुई इंडिकेटर दिए बगैर ही जो है
1: तो
0: वो रश टाइम में।
1: शाह साहब, चलते चलते साइकिलों वालों को क्या पैगाम देंगे?
0: इस साइकिल वालों की बाइक जो है इसको इंश्योर्ड होना चाहिए, इसको बकायदा एक नंबर इशू होना चाहिए, जैसे ये 70s में था, 60s में था, इनके ऊपर नंबर होना चाहिए और ये बकायदा इंश्योर्ड होने चाहिए ताकि इनको चलाते हुए पता लगे कि ये किसका साइकिल है, कौन टक्कर है, कौन गलत चल रहा है। और इनको इनको भी उतनी ही सजा देनी चाहिए जितना एक मोटरसाइकिल वाला या एक कार वाला मुजरम है।
1: शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब, जिन्होंने कीमती मालूमात दी। कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है, हमारे प्रोग्रामों का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसके लिए हमारा चैनल हाजिर है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: आउज़ बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सामाई नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह हमने सोशल मीडिया पर आपको बताया था कि आज हमारे लाइव मेहमान होंगे, एक तो हमारे थिंक टैंक हैं, दूसरे हमारे तजिया निगार हैं और दोनों सियासतदान भी हैं और गहरी नज़र रखते हैं कम्यून की सियासत पर, लोकल सियासत पर। और आजकल आपको पता है ना जी कि बजट भी जो है पेश हो रहा है, बजट पर भी बहुत सारी बातें जो होती हैं। तो हम शुरू करते हैं, दो मेहमान हैं, मैं तारफ़ करा दूँ। सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब और अदनान अली अमीन हमारे साथ, दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं आपकी आवाज़ पर।
2: ये राजा साहब, आपको भी, आपके लिसनर को भी और आपके नाज़रीन जितने भी हैं और अदनान साहब को, मैं अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम शाह साहब, शुरू करते हैं। सवाल है, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा, बारी बारी जवाब दीजिएगा। सबसे पहले बताइए कि इस साल के कम्यून के बजट की सबसे आम तरजियात क्या है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त जो सबसे बड़ी तरजियात होनी चाहिए वो ये है कि जो इस वक्त क्राइसिस में डेनमार्क चल रहा है उसको कैसे निकाला जाए, वो बजट में नहीं है। और जो बजट में है वो यही है कि कितने मकान बनाए जाए, लाइट हाउस बनाए जाए, कितनी सड़कें बनाए जाए, कितनी पार्किंग प्लेसेस बनाए जाए, कहीं कहाँ से स्कूलों की जो आमदन है वो स्कूलों को कहाँ से कट किया जाए, कहाँ जो बच्चे हैं उनको किस तरह सहूलतें जो हैं उसको माइनस किया जाए। तो ऐसी ऐसी बातें जो हैं, जो बजट अभी 100% बजट की जो शक्ल है वो रिटर्न सूरत में कहीं भी नहीं आई। सिर्फ जो डिस्कशन हो रही है, जो हम कॉस्मोपोल टीवी और दूसरे अखबारों से हमें जो थोड़ी बहुत खबर मिलती है, या कोई तजिया नगार डैनिश जो है वो बात करता है, तो उसकी वजह से। लेकिन सबसे बड़ी चल रही है कि छोटी जो वेस्ट आइल की जो कम्यूने हैं इसके अंदर अभी तक वो गर्मा गर्मी नजर नहीं आ रही जो कोपेनहेगन कम्यून के अंदर आ रही है।
1: कम्यून के अंदर आ रही है, बिल्कुल शाह साहब आपने बजा फरमाया। अदनान, यही सवाल आपके लिए, आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को देखते रहते हैं करीब से।
3: सब इस वक्त देखा जाए ना, सबसे बड़ी बात यह कि जो बजट है ना ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो मसाइल हैं उनको देखा नहीं जा रहा और उन पे बहुत सारा क्या कहते हैं जिसका सेविंग करने की कोशिश की जा रही है। और बेस्तान में भी वही सेम चीज चल रही है और वही कूपन है में चल रही है इस वक्त। और इस चीज को देखा जाए ना टेक्निकली तो ये प्रॉब्लम्स पाएगा, क्योंकि जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि स्कूल्स, ओल्ड रूम्स और ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मगर उसके अंदर बंदा देखे ना सारी कम्यूनों को एनालाइज करे और जिन जिन से हमसे हमारे रबते भी हुए हैं और जिन जिन से हमारी बात भी हो रही है और जो टेबल पे बातें भी हो रही हैं, वो यही है कि हमें समझ नहीं आ रही कि इतना सारी बजट ये करके तो लॉन्ग से ट्रिप पे ये नुकसान है। और इस चीज़ों पर कुछ पार्टी साड़ गई हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसला ये होता है कि एक और चीज है जो मैं कह दूं कि इस साल जो पैसे कम्यून को मिलते हैं ना स्टेट पुलिस स्टेट पुलिस से, वो भी डीप डीप तरह से कम्यूनों को दिए गए हैं। तो देखा जाए तो इससे डीपली कुछ कम्यूनों के अंदर जो एक्सपेक्टेड था ना कि उनको मिलना है उनको वो नहीं मिला, तो उससे क्या कहते हैं उनकी परेशानी थोड़ी ज्यादा हो गई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि वेस्ट आइल पे भी काफी क्या कहते हैं टफ टाइम है और काफी पार्टियां जो है वो
1: लेकिन ये एक सवाल पैदा होता है कि आम शहरी के लिए इस बजट में सबसे बड़ी फायदे वाली क्या बात हो सकती है।
3: सर मैं अभी देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें उनको कोई फायदा भी है, क्योंकि फायदा उस वक्त होता है जब आप बच्चों वाली फैमिली को या जो बुजुर्ग हैं जिस तरह ये इस तरह की चीजों पे बंदा क्या कहते हैं फोकस दे। मगर जब आप शुरू से ये बजट के अंदर लिख दें कि जो ये वेल्थिंग वाले डेफिनेटली ऊपर जो बैठे होते हैं कुछ सियासतदान उनको मालूम होता है, वो शुरू से लिख दें कितने पैसे बचाने हैं ना, तो फिर शुरू से ही क्या कहते हैं एक माहौल बड़ा चेंजेस हो जाता है। अभी जैसे कोपेनहेगन कमून है उसके अंदर जो जो खबरें बाहर आ रही हैं, मुझे तो वाकई समझ नहीं आ रही कि ये SF इंग्लिश लिस्ट वाले बैठे हुए हैं, ये विंगस्टर कंजर्वेटिव वाले बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पॉलिसी नजर बाहर आ रही है वो तो उनकी आ रही है नजर। तो इस तरह से बंदा देखे ना तो बहुत सारी बातें अंदर से बाहर निकलती जा रही हैं, आती जा रही हैं, क्योंकि जो वो होता है ना एक सिस्टम होता है ह्यूंग स्वा का, वो करीबन लोग जो अपना राय दे सकते हैं स्कूल और सारे लोग वो कल तक खत्म हो गए हुए हैं, आज मतलब 3 तारीख तक, तो मतलब समझे कि कल परसों तक ये नेगोशिएशंस जो
1: मतलब
3: है ना
1: बिल्ली
3: ये
1: जो है वो
3: खास
1: थैले से बाहर आ
3: कैंडिडेट
1: जाएगी। शाह साहब आप बताएं, शाह साहब का
3: जी।
1: आम आदमी को क्या फायदा हो सकता है इस बजट में बड़ा?
2: इस वक्त तो आम आदमी क्या, इस वक्त आप देखें कि पार्टियों के अंदर इनकलाब आने शुरू हो गए हैं। आप देखें कि वेंस्ट्रा के अंदर जो है वो अपने पार्टी फोरमैन के खिलाफ जो है वो खड़े हो गए हैं। पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है, क्योंकि लैंडसमैन जो हैं जो जराइत का काम करते हैं उनके अखराजात जो हैं वो आसमान से बातें करने शुरू कर दिए हैं। और फिर उनके बच्चे भी हैं, जैसे अभी अदनान ने बताया कि उनके बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल में जाना है और दूसरी जगह पे, और उनको जो बेंजीन और डीजल की गाड़ी है उनके अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसी तरीके से ये जो चीजें हैं ये सामने नहीं आ रही, बल्कि पिछले इस हफ्ते में जो प्रोटेस्ट हुआ है अपना लैंडसमैन का फलके सिंह के सामने, वो भी खुल के सामने आ गया है। तो मसला ये है कि SF और इनिस लिस्टर ने जो वादे किए थे अवाम के साथ वो सवालिया निशान बन चुके हैं, क्योंकि जो अभी तक ना SF वाले बता रहे हैं जैसे कि अदनान ने बताया, ना SF वाले बता रहे हैं, ना इनिस लिस्टर वाले बता रहे हैं, ना ही उनकी जो स्पोर्ट पर दूसरी रेडिकल वगैरह या सोशल डेमोक्रेट ये बता नहीं रहे कि हमने कौन कौन सी चीजें जो है वो फेस की हैं। हालांकि इनको चाहिए, आज आप देखें तो इस वक्त पेट्रोल जो है वो 18 करोड़ का हो गया है, ये डेनमार्क की हिस्ट्री का सबसे महंगा तरीन पेट्रोल हो गया है। और इससे आप ये देखें कि अगर कोई फैमिली है जिनके पास पेट्रोल गाड़ी है, और मेजोरिटी के पास इस वक्त कोपेनहेगन और वेस्ट आइन के अंदर जो है वो पेट्रोल और डीजल गाड़ी है, और वो इतनी महंगाई में जब उनकी वही पे है और वही पेंशन है हर एक चीज है, तो वो किस तरह करेंगे? कम्युनिटी इसके ऊपर बात नहीं कर रही, क्योंकि असल में हम स्टेट के तो स्टेट ने तो हमें इजाजत दी है कि आप पूरे डेनमार्क के अंदर कहीं जाकर रह ले, लेकिन जहां हम जाकर रहते हैं वो हमारी कम्यून होती है, और कम्यून जो होती है वो एंस वाली होती है, अपने जो अवाम होती है जो उसके अंदर रजिस्टर्ड होती है, फल्क होती है। तो हमें ये नहीं समझ आ रही कि एल्बर्सोन कम्यून जो है उसने अभी तक कोई ऐसी चीज शाया नहीं की कि हम देखें कि इसके बजट में कौन सी जो है वो अवाम दोस्त है। मैं तो यही कहूंगा जैसे मैंने पिछली दफा कहा था कि ये अवाम दोस्त नहीं बल्कि ये अमीराना बजट जो है वो सामने
1: ये
2: आ रहा है
1: अवाम
2: कि
1: दोस्त नहीं,
2: जो
1: ये अमीरों का बजट है। अदनान आप क्या कहते हैं कि क्या मौजूदा बजट अवाम की जरूरियात तो पूरी करता है, क्या हकीकी जरूरियात पर पूरी कर सकता है, पूरी करता है या कर सकता है?
3: सब जिस तरह से बजट अभी है वो कोई पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि मसला ये है कि जैसे हम लोग कभी भी, मैं दो तीन एग्जांपल आपको ये दे देता हूँ, तीन चार दे सकता हूँ। हम देखे मिसलन ग्लोव स्टोव देखे, व्हाइट हाउस स्टोव देखे, ब्राउन भी देखे, और कुछ बंदों ने फिर रबते भी किए और इस्लाम मसले भी किए, और जब हमने वो इनको चेक किया तो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी कि उसके अंदर कोई ऐसा क्या कहते हैं पॉइंट नहीं था। कुछ पॉइंट्स है थे जो बंदा कह सकता है कि अनसानी कर सकता है, मगर आप जब लैसी, आप को एक मोटी एग्जांपल दे देता हूँ कि बंदा हॉर्स प्लेस देखें कोपेनहेगन, सबको पता है हॉर्स प्लेस है, आप वहां पे कोई बिल्डिंग हो उसको आप उठा के ना पो ले जाए, वो वालदेन के लिए कोई कोई आसानी तो नहीं ना होगी। और इस ये चीजें इस तरह इकट्ठा करना, एक जगह से लेके उधर चले जाना, उधर से लेके इधर चले जाना, ये करना वो करना, वो बड़ा मुश्किल क्या कहते हैं चीज हो जाती है। और जैसे ये अभी कहा गया है कि ये जो आज एक किस्म की क्या कहते हैं टेक्निकली हिस्ट्री है कि विंस्टर की नेशनल जो पार्टी है उसमें से 19 सीटों में से 5 ले जाके कहा है कि हमने अपनी पार्टी के खिलाफ या अगेंस्ट ये कहते हैं वोट दे दिए। मतलब आप देखिए कि 29% ने अपनी पार्टी चेयरमैन के अगेंस्ट दे दिए। पार्लियामेंट का जो वर्किंग इस वक्त एक्टिव चेयरमैन है उसकी जो पार्लियामेंट को चलाता है जिसकी एक किस्म की कहां भी और पावर भी उतनी होती है जितनी प्राइम मिनिस्टर की होती है, वो अगेंस्ट चला गया है कि मैंने नहीं वोट इसके हक में देना। तो ये देखिए ना, मतलब कि एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन अपनी पार्टियों में काफी है और काफी क्या कहते हैं मुसीबतें हैं कि उन चीजों को देखने की जरूरत है। और दूसरा ये भी है कि जैसे आपको पता है कि ये बेंजीन जो है हम सब ने पैक किया था कि समर के बाद ये 16 पे खड़ी रहेगी, 15-16 पे, मगर वो 18-19 पे पहुंची हुई है। तो देखिए ना कि कुछ ना कुछ तो हल करना पड़ेगा ना। आप देखिए सूरत, आप प्राइजेस देखें, वो भी वहां पे ही खड़ी हैं, वो भी कोई इतनी डाउन नहीं हो रही, वहां
1: तो
3: पे ही खड़ी हैं।
1: अदनान जिस तरह बता रहे हैं, क्या शहरियों पर टैक्स या दीगर अखराजात में इजाफा जो है मुतवक्को है?
3: नहीं, टैक्स तो नहीं इनने बताना, वो तो मेरे ख्याल से वो नहीं आएगा टैक्स का, क्योंकि वो टेक्निकली नहीं, मगर ये बंदा स्पेक नहीं कर सकता कि टैक्स नीचे हो, टैक्स वहां पे ही रहेगा। जो टैक्स ने क्या कहते हैं हटाना था वो तो डिसाइड हो गया हुआ था, मगर वो 2028 से डिसाइड हुआ हुआ है, क्योंकि वो फिर ये जब नेशनल बजट बनेगा ना फैंस लॉ का, तो फिर उसके क्या कहते हैं उसके अंदर आएगा जो है कीमतों के बारे में जो सवाल आते हैं वो यही है कि जो स्वीडन का मॉडल है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और फनी चीज ये है कि स्वीडन के अंदर जो मॉडल लाया गया हुआ है ना, वो रेड पार्टी यानी कि लाई वो पॉली पची लाई थी अपने बेले में जब वो लाए थे, तो वही सिस्टम यहाँ पे कोशिश की जा रही है। मगर उसका मसला ये है कि वो सिस्टम अभी अभी साल लग सकते हैं आने में, तो वो साल लोग एक साल तो नहीं ना इंतजार करना चाहते, लोग तो कुछ अब भी इस वक्त क्या कहते हैं देखना चाहते हैं। हम जहाँ पे मैं साहब बैठे हुए हैं अब्दुल्लाह में, यहाँ पे तो पहले एक क्या कहते हैं बजट आया उसका तो एक पहले एक बम था, अब दूसरा बम ये है कि ये जो इनको छूट मिलती है वो भी इनको नहीं मिलनी। तो अब अनस्पेक्टर है कि पैसे कहाँ से लाए जाएंगे और क्या किया जाएगा, और ये चीजें तो थोड़ा बहुत अंदाजा होता है क्योंकि हम खुद बैठे रहे हैं और हम टेबलों पर भी काफी आए हैं रिसेंटली, मगर वही होता है कि कुछ ना कुछ तो लॉन्ग सेक्टर पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मसला ये है कि जितनी देर तक क्या कहते हैं ये ईरान का यूक्रेन का मसला नहीं हल होगा उतनी देर तक ये प्रॉब्लम रहनी है, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है वो यूक्रेन की तरफ जाता है। अभी ये 2 दिन पहले खबर मेरे ख्याल से आई थी कि अब यूक्रेन फिर रोने लग पड़ा है कि उनके पास पैसा नहीं रहा, तो ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं मसला
1: आपने
3: है।
1: अदनान, आपने बड़ी बात की है, शाह साहब की तरफ चलता हूँ। शाह साहब, ये कैमून के पैसे कहाँ और किन शोबों पर ज्यादा खर्च होंगे, और उसके अलावा क्या बजट पर गैर जरूरी अखराजात कम करने के लिए कोई अमली मनसूबा भी है शाह साहब?
2: ये जो बात छेड़ी है अदनान ने, ये बड़ी सियासी और बड़ी टेक्निकल बात है कि कम्यूनों ने जो पिछले चंद सालों में जो पैसा इकट्ठा किया था वो, और इनके पास जो ओस था वो स्टेट के पास चला जाता है, और स्टेट जो है वो जमानत के तौर पे इस पैसे को रख लेते हैं। वो पैसा सारा का सारा इन्होंने उठा के यूक्रेन की वॉर और दूसरे वॉर जंगी इलाकों में इन्होंने घुसेर दिया, और कुछ आपने डिफेंस पे लगा लिया थोड़ा बहुत। तो अब मसला ये है कि कम्यून स्टेट के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो दे, स्टेट कहां से पैसा लाएगी? स्टेट पैसा लाएगी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देगी, जैसे अब बढ़ी है, जैसे कि अब सिट्रोन जो है नींबू जो है 3-4 नींबू जो है वो 24-25, 25-25, 30-30 करोड़ के हो गए। इसी तरीके से सेबों की फ्रूट की जो कीमत है, इन्होंने जनवरी में ये शोर डाला था कि हम आएंगे तो हम जो मम्स हैं उसको गिरा देंगे और मम्स कम हो जाएगा, जुलाई के अंदर कम हो जाएगा, फिर हम प्राइसेस जो है उसको कम कर देंगे फूड से। तो ये इन्होंने नहीं की, बल्कि अब ये चीज हो गया है कि अगर ये कल को पहली जनवरी को या उससे पहले ये मम्स खत्म करते हैं तो फ्रूट तो फिर भी महंगा है, सब्जी तो फिर भी महंगी है, क्यों कि वो प्राइसेस इतनी हाई चली गई हैं। तो उसमें से अगर वो 25% मम्स निकालेंगे तो फिर भी जो है वो अगर इस वक्त जो 25-30 करोड़ के जो चार नींबू मिल रहे हैं सिट्रोन, अगर आप उनमें से ये निकाल लेंगे तो वो आप देखेंगे कि इनको 1 या 2 करोड़ सस्ता होगा वो। तो ये नुकसान जो है ये आवाम से पूरे किए जाएंगे। ये जो गवर्नमेंट है, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल गुलामाना ज़हनियत की है और ये चाहती है कि हम लोगों को दबा कर रखे। और दूसरी चीज, आपने दौरान की बात पर गौर नहीं किया कि वेस्ट आइन के अंदर और कोपेनहेगन के अंदर जो है वो, चलो कोपेनहेगन की तो बात एक अलग चीज है, वो बड़ी कम्यून है, लेकिन वेस्ट आइन के अंदर जितनी भी कम्यूने हैं इसके अंदर ज्यादातर नए मुंतखब काउंसलर्स हैं जिनके पास इतनी ज्यादा अफारिंग नहीं, इतनी ज्यादा तजर्बा नहीं, उनको पता ही नहीं कि बजट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या करना है क्या नहीं करना। सिर्फ सुन के तो हिसाब किताब नहीं लगाना, वो किसी चीज पे बहस नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं कि किस पोलियो से किस जगह से हम पैसा उठाकर कहाँ लगाना है। वो तो जैसे उनको पार्टी कहेगी, उन्होंने कहा जी हमने तो मुआदे किए हुए हैं, हम इस पे हाँ करेंगे, तो आपने भी हाँ करनी है। तो ज्यादातर इंटरेस्ट इस वक्त कोई नहीं है मेरा ख्याल में कि अगर ये इसी तरह रहा।
1: लगता है कि आप पॉइंट स्कोरिंग की बात करेंगे, पार्टियां पॉइंट स्कोरिंग करती है। अदनान आप बताएं कि स्कूल के बच्चों के लिए बजट में कोई खास रखा गया है, कोई चीज रखी गई है, कोई खास बजट रखा गया है?
3: सब जे जो मैं एक बात कह दूं कि ये बात जो कह रहे करेक्ट है, बहुत सारी चीजों का मसाइल पता है इस वक्त, दो चीजों की मसाइल भी हैं कि देखा जाए ना, जिस तरह है क्या कहते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए ना, तो वेस्ट आइन में ना और कुर्बान आम के अंदर ना बहुत सारी क्या कहते हैं तब्दीलियां आई हुई हैं, बहुत सारे नए मेयर आए हुए हैं, नया क्या कहते हैं कैबिनेट्स आए हुए हैं, तो डेफिनेटली वो टाइम लगता है कि उनके एक्सपीरियंस से उस चीजों के अंदर रहने से, क्योंकि आप देखें कोपेनहेगन में तब्दीली आई हुई है, क्लासाक्स में तब्दीली आई हुई है, ब्रॉनबी में भी एक किस्म का नया ही है, 1-2 साल वो वहां बैठी थी, SF बैठे हुए हैं, बिलो में भी, एबिसलो में भी क्या कहते हैं चेंज आया था, तो ये एक और एबिसलो में तो ऐसा चेंज है कि देखा जाए तो टेक्निकली तो आवाम जो है वो है रेड, मगर बैठा एक ब्लू हुआ है, तो मतलब कि ये टेक्निकली बड़ी होता है। जो आपका सवाल है उसके अंदर मैं आपको एक मोटी सारी एग्जांपल दे देता हूँ। हम एक यहाँ पे एमस्टोन के अंदर एक चीज बनी थी कुछ अर्सा पहले, उसका ये जो नया बंदे बैठे हुए इनको मालूम ही नहीं है कि वो चीज स्कूल के अंदर सिस्टम है, वो सिस्टम स्कूल बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। अब ये जैसे बैठे हुए हैं सारे, इनको पता ही नहीं कि वो सिस्टम कैसा है, क्योंकि सियासी बंदे बहुत नए हैं, पब्लिक में भी बहुत नए हैं, तो फिर वो थोड़ा होता है कि बंदे को
1: देखे ना, ये नए तो अपनी जगह, उसके लिए जो आगे देखना है कि जो जरूरियात है वो किस तरह पूरी करें। नए की तो जरूरियात पूरी होती रहती है, कोई भी मेयर बन जाए, कोई भी हो जाए। आप देखे ना, नौजवानों के लिए खेल, तालीम, रोजगार के हवाले से भी तो कुछ रखा जाता है, क्या इकदाम कर रहे हैं
3: सब, वो तो
1: अगर नौजवान आए हैं तो उनके लिए नौजवान क्या कर रहे हैं मेयर,
3: ये क्वेश्चन तो अब कोई बंदा क्या कहते हैं मेरी बात सुन के शायद नाराज हो जाए, गुस्सा कर जाए। मैं आपको एक मोटी एग्जांपल दे देता हूँ। ये जहाँ मैं और क्या कहते हैं साथ साथ बैठे हुए हैं, जिस दिन यहाँ पे इनने बजट वगैरह पेश करना था और सारी टीम को क्या कहते हैं बताना था कि हमने ये खैचलू बनाया और हम इस तरह जा रहे हैं, वहां का डिप्टी मेयर ने कह दिया था कि पता नहीं किस वजह से उसने माजत कर ली हुई थी, और ये डेट कम से कम 6 महीना पहले पता थी। अब मुझे नहीं पता कि क्या वजह थी कि क्या नहीं थी, वहां पर डिप्टी मेयर नहीं था या। और बाद में वही सोच पै गया था कि ये बंदा हर बार ऐसे करता है, तो मैंने फिर एक बंदे को मैंने उधर यही कहा कि देखिए अब वो बंदा ऐसे करता है तो ये तो फिर आपको खुद हाईलाइट करना चाहिए ना कि वो क्यों करता है, ये तो पार्टी को कहें या किसी को कहें तो बंदे को पता चले ना, क्योंकि जब आप एक ओहदे पे बैठे हुए हैं, आप डिप्टी मेयर हैं, आपके पास मेयर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक लेदर सा रोल होता है क्योंकि आपने मेन रोल प्ले करना है। इवन ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो शायद ना हो शायद टीम में शायद दूसरी टीम बनाई हो जिसने नेगोशिएशन करना हो, मगर वो लहरा बात है, मगर उसका काम तो इतना है ना कि वहां पे हो, उसको बता सके कि हमने ये क्यों ऐसे किया है, ये कैसे क्या किया और इसकी क्या वजह है और इसके पीछे बैकग्राउंड क्यों है, हमने क्यों इतना 58 मिलियन माइनस क्या कहते हैं बचाने का प्लान बनाया हो, तो बंदे को इतना तो पता हो ना कि क्यों बना है और किस वजह से बना है और इस चीज में क्या है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2-3 चीजें यहाँ पे एम्सलोन में है जिस पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं, मुझे पता चला है कि रॉस्किले में भी करने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है इस बार और मुझे पता है कि लोग इस बार बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। मैं न्यूट्रल वे से भी कह सकता हूँ, मेरी जो परेशान है उस वजह से मुझे बड़े सवाल किए गए हैं और मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं जवाब दे सकूं, मगर मसला ये है कि मुझे फ्रेंकली इस वक्त खुद समझ नहीं आ रही कि ये लैंड कैसे होगा, क्योंकि मैं एब्सलोन की बात कर रहा हूँ, टॉस्टो में मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है और जगह पे भी कुछ जगह पे ये लैंड करने बड़े मुश्किल है सारे, इतना ये इतना आसान नहीं है जितना बंदा कह सकता है, क्योंकि बात वही होती है कि जब जब आपने पैसे को एक एक करोड़ को देख के इस बार आपने डिसाइड करना है, क्योंकि आपने ये भी देखना है कि कुछ चीजें जो है, मैं आपको बता दूं कि एक व्यूअर्स के लिए इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि मसला ये है कि ये जो 2027 का बजट है ना, इसके अंदर कुछ तब्दीली आई है कि कुछ जो पहले अक्यूम्स के अंदर ऑपके होते थे ना, वो ऑपके वो कमून के अंदर भी आ गए, वो कमून को दे दिए हैं और वो पैसे फॉलो नहीं हुए जो मुझे समझ आ रही है। तो आप ये भी एक मसाइल है कि आपको काम ज्यादा मिल गए हैं मगर सर आपको वो पैसे नहीं मिले, तो ये भी तो आप देखना है
1: काम शाह साहब ज्यादा मिल गया तो पैसे नहीं मिले। तो शाह साहब ये मैं आगे दूसरे मिसाल की तरफ बढ़ता हूँ, क्या जो गैर मुल्की हैं या तारकिन वतन हैं, मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के लोग हैं, नौजवान हैं, उनको जो है अभी उनको भी एक ही तरह के मुनासिब मौके मिलते हैं हर चीज़ में?
2: जी बिल्कुल सबको मिलते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या वो आयन और अपनी लोकल जहां वो रह रहे हैं कम्यून उनके जो कवानीन है उनको फॉलो करते हैं या नहीं करते। अभी इदरान ने बड़ी प्यारी बात की है, मैं उसको थोड़ा सा देखूंगा और बताऊंगा ताकि आपके व्यूअर्स को जो हमारा मसला है वो समझ आए। 70s, 80s, 90s के अंदर ये होता था, mid-90s तक ये होता था कि जो कम्यूनियन होती थी उसके अंदर जो होते थे ना क्रीस जिसको हम हल्का कहते हैं, उस हल्के के अंदर जो होते थे मुख्तलिफ पार्टी थी, मतलब सोशल डेमोक्रेट है, रेडिकल है, वेंसा है, कंजर्वेटिव है, जो भी पार्टी होती थी वो अपने जो लोकल प्रॉब्लम होती थी उसमें बहस करते थे, उसके अंदर पार्लियामेंट के मेंबर्स या जो नामजद मेंबर्स होते थे या काउंसलर्स वगैरह वो वहां पे बैठते थे, फिर उसके ऊपर एक डिस्कस होती थी और देखा जाता था कि इलाके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है, आवाज कहाँ जुड़ रही है। तो इस दफा जो अदनान बात कर रहा है, इस दफा लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ के लोकल प्रॉब्लम क्या है और बजट में क्या पेश कर दिया गया और लोकल लोगों की प्रॉब्लम क्या है। अब महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर ये पूरा महीना सितंबर का इसी तरह महंगाई रही तो अगले महीने में अक्टूबर में लोगों की चीखें निकल आएगी, लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे और ये जो टैक्सीज वगैरह का और ये दूसरा जो ड्राइविंग सिस्टम है जितना भी डेनमार्क के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये भी कोलैप्स होकर आ जाएगा। आपको पता है कि इस वक्त ऑलरेडी जो आपकी एस्ट्रो है ट्रेन वगैरह है उसके अंदर ड्राइवर नहीं उनको मिल रहे, वो भी फ्रस्ट्रेशन में है सब लोग, क्योंकि वहां के जो उनको काम करना पड़ता है और जो उनको पे मिल रही है वो भी बहुत कम है। तो ये जो गवर्नमेंट है इसको इस चीजों पे सोचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो इदनान ने जो पुट अप किया है मसला वो यही है कि जो हमारी लोकल कम्यूने हैं क्या वो अपने अवाम की जो उसके अंदर रह रहे हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। अगर वो नहीं समझ रहे तो फिर इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम जो पार्टीज हैं हो सकता है कि डेंस फर्के पार्टी का फोरमैन आ जाए, इनका सॉयबेयर की पार्टी का फोरमैन आ जाए, कोई और आ जाए पॉ मिनिस्टर, क्योंकि ये जो पुरानी पार्टीज हैं इनके पास जो ना तजर्बाकार लोग सामने आए हैं उनका अवाम से रब्ता नहीं। अगर वो अवाम से रब्ता रखेंगे तो ये चीजें आगे चल के ठीक होंगी।
1: ये तो साथ साथ चलता रहेगा। अब आते हैं अगली तरफ बढ़ते हैं, ये जो मसाइल समाजी मसाइल होते हैं, शाह साहब आप बेहतर समझते हैं, आप भी पेंशनिस्ट हैं, बुजुर्ग हैं, अदनान तो जवान है अभी, ये जब बुजुर्गों या उनके कम आमदनी वाले जो लोग हैं या खानदानों के लिए बजट में कोई सहूलत रखी गई है या सहूलियात रखी गई है?
2: जी नहीं, बिल्कुल मैं नहीं समझता कि इनके लिए कोई रखी गई है, बल्कि इनको एक जो है वो गुलाब जामुन या लॉलीपॉप इनको दिखाया जा रहा है कि अगले साल हम ये करेंगे। भाई चीखें अभी निकल रही हैं, महंगाई अभी है, डीजल पेट्रोल की कीमतें इस वक्त हवा में है, लोग मेजोरिटी फर्में बंद हो रही हैं, आबस से बढ़ रही है, टैक्स कैसे जाएगा? जब ज्यादा लोग काम करते हैं तो कम्यून के अंदर टैक्स का रेट बढ़ जाता है, लोग ज्यादा अमीर हो जाते हैं, कम्यून भी जो है उसके उसके बजट में भी ज्यादा पैसा आ जाता है। तो अब जब ये सारी प्रॉब्लम एक साथ ज्यादा आ गई है हम पे, तो आवाम जो है वो तो पिस के रह जाएगी और कम्यूने जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये बेहतर यही होता कि कम्यूनों को चाहिए था कि जो इनके इलाकों में एक्सपर्टीज जा रहे हैं या एक्स सियासतदान जो पहले थे उनको बुलाकर एक उनके साथ मशवरा करना चाहिए था, उनके साथ एक डिबेट करनी चाहिए थी कि जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उसका हल कैसे किया जाए। मिसाल के तौर पर जो बच्चों वाली फैमिलीज हैं या वो जिन्होंने जो गाड़ियां या ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट में ये ट्रेन भी आती है सारा कुछ, इससे जो सारे रिलेटेड हैं अगर वो कल को बेकार हो जाते हैं तो उनका क्या हाल होगा? क्या वो ये जो 15-20 हजार करोड़ उनको टैक्स काट के तो उनको थोड़े से रकम मिलेगी, क्या इसमें वो गुजारा कर लेंगे? क्या वो अपने मकानों का किराया दे सकेंगे? आप ये देखेंगे कम्यूनों के अंदर रहते हुए भी इस वक्त इन्होंने जो अनमेली पोलिस हैं उनके किराए जो हैं उनको बढ़ाया है, कम नहीं किया, और ये भी कम्यून का फर्ज बनता है कि वो अनमेली पोलिस से बात करें और उनको समझाए कि भाई आप जो है ये किराया दिन ब दिन ना बढ़ाएं। अब आप ये देखें कि बिजली के बिल जो हैं ये पिछले साल की नस्बत इस दफा बहुत ज्यादा बढ़े हैं और लोगों की चीहें निकल रही हैं। तो ये अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो मसला बहुत बड़ा हो जाएगा। जी राजा साहब,
1: आपने शाह साहब की बातें सुनी कि लोगों की जो हैं वो चीखें निकल रही हैं, चीखें तो डेफिनेट निकलेंगी और बहुत सारी निकलेंगी। अब देखें इदरान, जब ये बजट बनाया जाता है तो क्या शहरियों की शिकायत या तजावीज़ को बजट में बजट के अमल में किस हद तक शामिल की जाता है, जाती हैं या जाती हैं?
3: सब देखा जाए, इस साल मैं एक चीज़ कहूँगा कि क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इस चीज़ को देख भी रहा हूँ, एनालाइज भी कर रहा हूँ, इस साल वो सारी परेशानियां लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर गौर से और अमल भी कर रहे हैं, मगर मसाइल ये होते हैं कि जब आप देखें ना कि जब आपने बैठते हैं ना तो फिर आपने हर मसाइल को देखने की कोशिश करनी होती है और आपने डीपली उसके अंदर चीज को देखने की कोशिश करनी होती है। और इस बार मसला ये है कि कम्यूनें जो है ना वो हर तरफ से अपना कोशिश ये करेंगी कि लॉन्ग सेक्टर बजट बने और ऐसा बजट बने कि बंदा 2829 में ना दोबारा उस प्रॉब्लम में ना आए। तो प्रॉब्लम्स ले रहे हैं और इसीलिए होता है कि जब बजट पेश हो जाता है ना तो आपके पास करीबन 2 हफ्ते होते हैं तो उसके अंदर आप जो स्कूल होते हैं आम इंसान अपनी तरफ से भी उसको एक मिलता है मौका कि वो एक अपना ईमेल पे बेच सकता है अपनी राय और वो राय सारी कम्यूनों में चली जाती हैं और वो जाती हैं 2-3-4 नंबर तक और वो चली गई हुई हैं। और आज डेडलाइन है एब्सलोन की, क्या कहते हैं कम्यून की और दूसरे बहुत सारे वेस्टर्न कम्यूनों की, जब वो जाएंगी डेफिनेटली उनको पढ़ेंगे, उनमें देखेंगे कि कुछ आईडी देंगे लोग, कुछ कंपनियां देंगी, सब देंगे, उसके बाद फिर वो देखेंगे कि कौन सा सोल्यूशन सही है, इसमें से कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, पढ़ते हैं, उनको गौर भी करते हैं, उनको देखते भी हैं और सलाह मशवरा भी करते हैं और आपस में बातचीत भी करते हैं। और डेफिनेटली टेबल पे तो बुलेरा बात है कि जब टेबल पे बैठते हैं तो बुलेरा चीज होती है और उसके अलावा भी आपस में बातचीत होती है। और इस वक्त मसला यही है कि इस साल 2027 के अंदर ये हुआ है कि जब ये नया रिफॉर्म इन रीजन का बनाया था, जब 5 रीजन से 4 रीजन बने थे तो फिर इनने कुछ जो आपके वो थे ना वो कम्यूनों के अंदर ले गए हैं, तो इसलिए इस बात ने थोड़ी बहुत क्या कहते हैं फिर वो चीजें भी इनने देखनी है और सारा कुछ सिस्टम देखना है इनने। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला होपफुली बजट बनेंगे और अल्लाह करे कि अच्छे
1: बजट
3: बने,
1: बनेंगे,
3: आपके लिए
1: बनते
3: बेहतर
1: रहेंगे।
3: बने।
1: तो अब आप दोनों से मेरा बराह रास्त सवाल है, आपको किस बजट में या इस बजट में कौन सी खूबी नज़र आती है और कौन सी खामी नज़र आती है, ये दोनों से मेरा सवाल है।
2: जी मैं तो ये कहूंगा कि मुझे तो इस बजट में जो मैंने मेरी नजरों से गुजरे हैं, जो मैंने तजिया नगारों से या अपना मैंने अखबारों में या आगे पीछे टीवी पे देखे हैं, अभी खसूसी तौर पे जो वेस्ट टाइम का जहां मैं एल्बर्ट रोड में रह रहा हूँ इसका अभी फुली ओपन नहीं हुआ। मसला यह है कि जब माइनस आप जा रहे हैं, जब आपके पास इतना पैसा ही नहीं, तो फिर आप कहाँ से पैसा लाएंगे? स्टेट के पास पैसा नहीं है, स्टेट जो है वो हमें ब्लफ कर रही है, वो कह रही है मेरे पास तो ओवर स्कूल है और मैं दे रही हूँ, लेकिन कहाँ है वो पैसा? वो पैसा क्यों नहीं दे रही जो इन्होंने कम्यूनों से वापस दिया था, जो कम्यूनों का जमा है वो दे ताकि लोगों पे इस बुरे वक्त में लोगों के काम आए। तो ये जो ब्लफिंग कर रही है इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट और इससे अवाम। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो बहुत ही जरूरी है सियासत के अंदर, सियासत के अंदर ये होता है कि जो लोकल सियासतदान होते हैं वो अपनी गलियों का और अपनी वहां के रहायशों की जो बजट है वो पहले ही पेश करते हैं। यानी कि अभी आपने अदनान से सवाल किया था, अदनान ने जवाब दिया है कि ये जो अभी जो फौसले जाएंगी ये 27 के अंदर इसके ऊपर बहस होगी, ओवर 28 में जाके इस पे कुछ चीजों पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो बजट अभी आया है, ये जो बजट अभी ये सामने पेश हुए हैं, ये 25 के हैं, ये पिछले साल के हैं जो इनके इनके सामने आई हुए हैं कि भाई हमने यहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी है, यहाँ पे हमने स्कूल को इतनी मदद देनी है, यहाँ से हमने इतनी चीजों को आगे बढ़ाना है, ये पुरानी बिल्डिंगों कैसे, सड़कें कैसे,
1: शाह साहब ये
2: ये
1: सारी
2: सारा कुछ
1: चीज़ें
2: जो है
1: ठीक हैं। शाह
2: पिछले
1: साहब
2: साल
1: चले
2: का है।
1: आपको ले आते हैं, चूंकि आप अपोजिशन की तरफ से हैं, जो है वो अदनान है, वो हुकूमती जमात से उनका ताल्लुक है। तो अगर शाह साहब आपको इस बजट में एक तब्दीली करने का इख्तियार मिले तो आप कौन सी तब्दीली करेंगे?
2: मैं सबसे पहले जो यहाँ के अवाम है जिनके पास ज्यादा से ज्यादा फैमिली जो है वो गुर्बत की से नीचे रह रही है, मैं सबसे पहले इस बजट में उनके लिए पैसा रखूंगा ताकि वो खुशहाली आए। खुशहाली सिर्फ इस वक्त हो सकती है जब आपकी जेब भरी हुई है, तो आप जाते हैं, आप दुकानों से भी चीजें खरीदते हैं, खुराक खरीदते हैं, दवाइयां खरीदते हैं, तो वो पैसा जो है आप अपने कम्यून के अंदर खर्च करते हैं, तो उससे जो है वो सरमाया जो है उसका सर्कल जो है पिया उसका जो होता है वो सर्कल करने लगता है। मैं तो ये करूंगा कि जब तक अवाम के पास पैसा ना होगा, और उसको सबसे बड़ी मिसाल ये दूंगा, अदनान इस पे बिल्कुल बात कर सकता है कि यहाँ के इस वक्त जो लाए बोली हैं इनके उस लाए इतने ज्यादा हैं कि आप टैक्स कम पे कर रहे हैं और उस लाए आपके डबल हैं, तो इससे जो है आवाम ज्यादा पिसकी है, इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा।
1: अदनान, आपको कोई एक तब्दीली करने का अख्तियार मिले तो आप कौन सी तब्दीली करेंगे?
3: सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इनको दो दो मेन चीजें हैं जिन पे इनको फोकस देने की जरूरत है। ये है कि ये जो पूरा एजुकेशन का सिस्टम है ना, जिस तरह स्कूल से लेके स्कूल एजुकेशन को, इन दो चीजों पे इनको इतना कट ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर है इनका, फ्यूचर में इनकी बहुत जरूरत है, तो इन पे गौर करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो बच्चों को मसाइल हैं उनके लिए भी इनको थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। दूसरा इनको ये करना चाहिए कि बुजुर्गों पे इनको गौर करना चाहिए कि बुजुर्गों को हेल्प देने की जरूरत है, क्योंकि
1: नहीं,
3: बुजुर्ग बहुत
1: अगर
3: सारे जो
1: आपको
3: हैं
1: एक तब्दीली
3: वो।
1: करने का अख्तियार मिले तो आप क्या करेंगे?
3: मैं सबसे पहले जिस चीज पे काम करना चाहता हूँ ना, और जो मेरी मैंने जो इलेक्शन में भी कहा था और सब लोगों को, वो ये है ये जो फ्यूचर में इन समझ रहे इस पे काम करने की बड़ी जरूरत है बुजुर्गों की, क्योंकि बुजुर्ग जो है ना वो उनकी एक बहुत टफ जिंदगी गुजरी होती है, और आगे जो बुजुर्ग हैं वो खाली घोड़े की तरफ नहीं है, वो हमारी नेशनैलिटी के भी आएंगे, तो इनको एक तरफ करने है तो इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप काम करेंगे तो आपको फायदा होना है, क्योंकि लॉन्ग सेक्टर पे बुजुर्ग ज्यादा होने हैं और कोई ना कोई इनका क्या कहते हैं हल ढूंढना है, तो تو اس پہ پسپال سے کرنا سب سے بڑی اسٹیوبرڈ بات ہے اس وقت. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے جو ابھی تک میری علم میں آیا وہ یہی آیا کہ 98 سے 98 میں سے کم از کم 70 سے دے کے 75 کمونوں تک اس کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ ان کی پسپال سے ضرور ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ فویلکنگ میں کون بیٹھ کے اس طرح کی پسپال سے کر رہا ہے, مگر اب ان کا آئیڈیا ہے.
1: اچھا شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. شاہ صاحب اگر اس موجودہ بجٹ میں آپ ہاں کرتے ہیں تو کیوں, اگر نہ کرتے ہیں تو کیوں؟ جی شاہ صاحب.
2: جی میں نے پہلے یہ کہا کہ میں اگری کرتا ہوں عذران کے ساتھ کہ بوڑھے اور بوڑھوں کے ساتھ جو ہے نا وہ فیملیز, جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا تھا فری گرونے کے جو فارمر انہوں نے کوپنہیگن کے پلیٹ فارم پہ یہ بات کی کہ 5,000 جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں. اس سے اسکول بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں, اس سے نارمل لائف بھی افیکٹ ہوتی ہے, ہر ایک چیز افیکٹ ہوتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں فیملی کو دیکھا جائے, فیملی کو یہاں پہ آئین کی ایک بہت بڑی وائلیشن ہو رہی ہے راجہ صاحب, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ دو بندے رہ رہے ہیں, آپ کما رہے ہیں, بچوں کا بچوں والا گھر ہے, بچے سب انڈر 18 ہیں, اگر میاں کما رہا ہے اور بیوی جو ہے وہ بیماری پہ چلی گئی ہے تو اس کو کم پیسے ملیں گے اس وجہ سے کہ اس کا میاں کما رہا ہے, اور اگر وہ دونوں پینشن پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ایک عورت کو جو ہے وہ پینشن کم ملے گی اور مرد کو زیادہ ملے گی, اور اس طریقے سے یہ افیکٹڈ ہوتا ہے. حالانکہ دونوں نے برابر کا ٹیکس دیا ہے, برابر کے حقوق ہونے چاہیے, اور یہ جو ڈسکریمنیشن ہے اسی وجہ سے غربت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ڈنمارک کے اندر. یہ ڈنمارک وہ تھا جس کا طوطا پوری دنیا میں بولتا تھا اور یہاں پہ بہت ہائی لائٹ کیا جاتا تھا.
1: دیکھیں نا سیاسی پارٹیوں کے اختلافات کی وجہ سے بجٹ کے اہم عوامی منصوبے جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں, یہ عدنان سے بھی سوال ہے.
2: جی میں ذرا اس کے اوپر یہ صرف یہی کہوں گا کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ نیا آدمی ہے, جتنے پرانے تجربہ کار لوگ تھے وہ تو ہٹ گئے یا وہ پیچھے بیٹھے ہوئے, ان کی کون سنتا ہے. یہ ینگسٹر جو ہیں یہ صرف
1: اپنے تو زیادہ مسائل کا پتا ہوتا ہے.
2: نہیں جی ینگسٹر کو کوئی مسائل کا نہیں پتا ہوتا, یہ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور یہاں صبح کام پہ چلے جاتے ہیں اور اپنے مسائل کو یہ دیکھتے ہیں. ان کو کوئی پتا نہیں کہ نیبر میں کیا ہو رہا ہے. بالکل حقیقت ہے, اب عدنان جو ہے یہ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ رہا ہے کہ یہ خود فیملی والا ہے اور یہ خود یہاں پیدا ہوا ہے, اس لیے اس کو پتا ہے کہ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ میں کس طریقے کی پرابلم چل رہی ہے.
1: آپ کا جواب آ گیا شاہ صاحب. عدنان آپ بتائیں کہ یہ جو سیاسی اختلافات آپس میں ہوتے ہیں یہ عوامی منصوبوں کو پھر نقصان نہیں پہنچتا؟
3: پہنچتا ہے, بس سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پہنچتا ہے کہ اپنے مسائل جو ہوتے ہیں وہ نہیں. مگر آپ دیکھیں نا اس وقت جس طرح اب ہم خالی لوکل نہیں کر رہے, ہم پوری صورتحال کی کر رہے ہیں. ہم دیکھیں نا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز کی اس وقت ضرورت ہے اور کس چیز کی نہیں ہے. اس وقت دیکھا جائے سب سے زیادہ جو ہے نا اپنے مسائل سائڈ پہ کر کے یہ ضرورت ہے کہ ہم ایک پیج پہ آئیں اور ان مسائلوں کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہم لوگ اپنا دیکھیں گے نا تو ہم اس معاملے سے باہر نہیں نکل سکیں گے, کیونکہ جو سلوشن جس کا شروع سے کہا گیا ہے ہم لوگ بے وسا رہتے ہیں. ہمیں کل تک تو میں کہہ رہے کہ کل تک تو اندازہ نہیں تھا ہمیں یہ کیسے یہ صورتحال چاہے گی, مگر اب تھوڑا بہت ہمیں کیا کہتے ہیں اندازہ ہونے لگ پڑا ہے, کیونکہ ہم نے ٹائم تو نہیں ملا کیونکہ ہماری آج مصروفیت تھی دوسری جگہ پہ, مگر آج شام کو ہی ہمیں پتہ چل جائے گا تھوڑا بہت جب ہم ان چیزوں کو بیٹھ کے دیکھیں گے. اب کیونکہ اب ہمیں سارا انالائز ہو گیا کہ کیا کیا ہمارے پاس ہے اور کیا کیا نہیں ہے, تو وہ پھر دیکھیں گے کہ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم جب پاکستانی ہوں, ترکی ہوں یا ڈینش ہوں, اس وقت ہم بس یہ دیکھیں کہ ہم نے کس کے لیے کون سی بہتری کرنی ہے اور کیسے ہم نے بہتری کرنی ہے, کیونکہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, آپ ہیں, ہمارے والد صاحب, ہمارے پیرنٹس بھی ہیں, سب ہیں. ہمیں سب کے لیے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز بہتر ہے, کیونکہ ہمیں سب کو پتہ ہوتا ہے. میں خود کہتا ہوں کہ جب میں پیچھے جاؤں, ایک سال پیچھے جاؤں, ٹوکری میں میرے خود دیکھتا ہوں, جس مرض جو مرضی انسان ہو, جتنا مرضی ہو جس کے پاس, اس کی ٹوکری میں کم چیز ہوتی ہے. تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ مسائلوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے.
1: مسائلوں کو حل کرنا چاہیے. عدنان میرا آخری سوال ہے, ٹائم میں بالکل اجازت نہیں دے رہا, آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, پھر ارشاد صاحب کا پیغام لیتے ہیں.
3: میں عوام کو یہی دوں گا کہ آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے آپ اس فیصلے کی کوشش کرنا کہ آپ اس کو سپورٹ کر سکیں. جن لوگوں نے
1: کمیون سے کیا توقع رکھتے ہیں
3: جی,
1: اور ساتھ ساتھ کمیون سے کیا توقع رکھتے ہیں.
3: میں بس میں خود اس کے اندر ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ اپنی طرح سے ہر کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر چیز کر سکیں اور کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو صورتحال دے سکیں, کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آگے نہ دی تو کون سی کیا کہتے ہیں کون سی تبدیلی ہوتی ہے. اور جیسے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک پارٹی کے اندر 33% لوگ اپنی پارٹی کے اگینسٹ ووٹ دے دیں, تو اس سے ایک سگنل مل گیا ہے, تو لیٹس ہوپ کہ بہتر ہی ہوگا کچھ.
1: شاہ صاحب آپ اپنے معزز مہمان کا شکریہ بھی ادا کریں, اور آپ مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں, کیا کہیں گے شاہ صاحب؟
2: میں اذان کی اچھی اچھی باتیں سن رہا ہوں, بڑا اچھا بچہ بات کرتا ہے اور بہت خوشی ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اور ہمیں عوام کو جو ہے وہ آگاہی دیتے ہیں. دیکھیں اس وقت بہت سارے قانون جو ہیں وہ لا فورسز جو ہیں وہ ہینڈلنگ ہو رہی ہے آلریڈی, اور جو آنے والے سالوں میں ہمارے اوپر لاگو ہوں گے. ہمیں بڑی سوچ سمجھ کے ان پہ بات کرنی چاہیے اور ہمیں اس کے اوپر کوئی کوئک ایکشن لینا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں جتنے بھی ہمارے کونسلرز ہیں, جتنے بھی ہمارے فنکشنل سیاستدان ہیں جن کا مختلف پارٹیوں کے اندر اثر رسوخ ہے یا ان کے ممبرز ہیں, میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے انگلینڈ اور امریکہ میں ہوتا ہے اور دوسرے چار ملکوں میں کہ کونسل ڈبیٹ جو ہے کونسل ڈبیٹ ہوتی ہے کہ جو آپ کے کمیونز ہوتی ہیں اس کے اندر مہینے میں ایک دفعہ جو ہے کم از کم وہ جو ہے مختلف فری بلی لوگوں کو بلا کر ان کی ڈبیٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ آ کر جو بجٹ آنے والے بجٹ ہے آنے والی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر وہ رائے لے سکے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے عوام کی جو پرابلمز ہیں ان کی بھی آگاہی ہوگی اور آگے چل کے جو ہے جو کمیونز ہیں وہ اپنے بجٹ میں کافی بجٹ کر سکتی ہیں. کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ البرسٹون کے اندر جو چند سال پہلے جو یہاں پہ چیزیں ہوتی تھیں وہ اب نظر نہیں آ رہی, اور جب یہ نظر نہیں آ رہی تو لوگ یہاں سے فروتا کریں گے. ابھی بھی عدنان جاتے جاتے بتا سکتا ہے کہ یہاں 4,450 آدمی جو فیملیز ہیں ان کی ضرورت ہے کہ وہ البرسٹون میں آئے تاکہ یہاں کا ٹیکس لیول جو ہے وہ پورا ہو. اور اسی طریقے سے ٹرانسٹروپ اور دوسری جگہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ فلتا کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس جن کے پاس گاڑیاں ہیں جہاں پہ آپ پارکنگ ٹکٹ لگنے شروع ہو گیا کہ آپ یہاں پہ یہ کریں, تو وہ لوگ آپ موو کر رہے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی کمیونوں کے اندر شہر سے باہر جانا شروع کر دیا انہوں نے, اور وہ صرف اس لیے کہ وہ اپنے بجٹ کو جو ہے وہ نارملائز کر سکے. اور یہ بڑی خوش رہندہ بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کاریں ہیں, دو کاریں ہیں, ایک کار ہے, تو آپ شہر سے باہر رہ رہے ہیں تو آپ کا بجٹ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے آسانی کر سکتے ہیں, بنسبت کہ آپ 11,000-12,000-14,000 کے کرائے کے مکان میں سٹی کے اندر آپ رہے اور وہاں پہ آپ کی اتنی پے نہیں ہے. اگر آپ 28,000-29,000 ٹیکس کے بعد آپ پیسہ لے رہے ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں, تو اس میں 14,000 اگر آپ ٹیکس مکان کا کرایہ دے رہے ہیں تو آپ کے پاس بچت کیا ہوگی؟ تو یہ چیزیں دیکھنی ہیں, تو آپ نے اپنے پاکٹ کو دیکھنا ہے. تو میں تو اس وقت جو ہے سب کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمیں برداشت کر رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, لیکن اگلی دفعہ جب ہم بات کریں گے تو ہم ایسے لا فورس کو سامنے لے کے آئیں گے کہ جو کہ آنے والے دنوں میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے یگسٹر جو ہیں اس پہ.
1: ناظرین ہمارا ٹائم جو ہے بالکل ختم ہو گیا تھا, تو ہماری لائن کٹ گئی. ان دونوں نے بڑی مفید معلومات دی, بڑا اچھا تجربہ ان کے پاس, بڑی اچھی یہ بات کرتے ہیں دونوں اور اچھی معلومات دیتے ہیں. یہ دونوں بہت سٹڈی کرتے ہیں, خاص کر عدنان جو ہے بہت چیزیں قریب سے دیکھتا ہے, انالائز کرتا ہے, چونکہ تقریباً یہ کافی بجٹ کا خود بھی حصہ رہے. تو شاہ صاحب جو ہے وہ سالہ سال سے ان کو 50-60 سال سے ان کو اس چیز کا تجربہ ہے کہ یہ بجٹ اور سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپس میں اختلافات ہو جائیں تو پھر نقصان جو ہے عوام کا ہوتا ہے, ہمیں بڑی بڑی گاڑیاں نظر آتی ہیں شہر کے اندر، باہر بھی نظر آتی ہیں، آپ کسی بھی عوامی اجتماع میں جائیں، کسی بھی فنکشن میں جائیں تو آپ کو لباس کا آپ دیکھ لیں، آپ گاڑیوں کو دیکھ لیں، اسی طرح رہن سہن کو تو بندہ کسی کے گھر کے اندر نہیں دیکھتا، لیکن آپ مارکیٹوں میں جائیں تو دیکھیں آپ کو شاپنگ کے لیے کوئی قید جو ہے کاؤنٹر آپ کو خالی نظر نہیں آتا۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، جو تھنک ٹینک پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ان چیزوں پر جو ہے وہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ سامع ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहुजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मुसलमान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मुसलमान, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मुसलमान इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मौजूद सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है, लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने आयरलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वजीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है? ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई? ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे? पिया कियास्को को बता दे डेनमार्क ने जो तरक्की की है वो डेंस के फोल्क पार्टी से नहीं की है, بلکہ انہی انواندرہ لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندرہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائند آباد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।